0: सूचना सूचना सूचना निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सम्बन्धी सूचना।
1: नवीन निशुल्क जलन सर्जरी तथा परामर्श शिविर सम्बन्धी सूचना।
0: लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नबिल बैंक र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा नबिल निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको छ।
1: मिति 2083 वैशाख 25 गतिदेखि 28 गतेसम्म।
0: स्थान राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दा।
1: उपचार हुने मुख्य समस्याहरू:
0: आगोले पोलेर शरीरको भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने,
1: पोलेका कारण हात खुट्टाका औंलाहरू टाँसिएको,
0: पोलेर टाउको कपाल गुमेको,
1: एसिड आक्रमण वा विस्फोटनमा परि जलन भएका,
0: जन्मजात हात खुट्टामा 5 भन्दा बढी औंला भएका वा पैतला भित्र फर्किएका।
1: विशेषता:
0: वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जनद्वारा पूर्ण रूपमा निशुल्क शल्यक्रिया तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
1: थप जानकारी वा नाम दर्ताका लागि अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला।
0: विस्तृत जानकारीका लागि 9853500076 अथवा 9840523555।
2: अब सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ सेवाहरूको लागि सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी।
3: हाम्रा सेवाहरू:
2: आधुनिक भवनको नक्सा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
3: बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लागि घर जग्गा तथा सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्ने,
2: विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको लागि भित्र मूल्याङ्कन गर्ने,
3: घरेलु कार्यालयको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने।
2: सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, रेडियो लुम्बिनीको भवन, मणिग्राम, रूपन्देही,
4: शाखा कार्यालय तिलोत्तमा नगरपालिकाको अगाडि।
3: सम्पर्क 9857024344, 9857035227 र 9857073220।
5: बर्जर घर रंग रौनक, घर र मन दुवै रंगीन बनाउने आकर्षक अफर आजै बर्जर पेन्ट्सको खरिदमा पाउनुहोस्। मोटरसाइकल, फ्रिज र मोबाइल फोन जित्ने मौका, साथै स्योर सर्टमा पाउनुहोस् 100 square feet को सेल्फ इल्युजन डिजाइन पनि। शर्तहरू लागू हुनेछन्।
6: बुटोल भैरहवाको बीच मणिग्राममा स्तरीय क्लिनिक नीता पोली क्लिनिक प्रणाली।
7: हाम्रा सेवाहरू:
6: जनरल फिजिसियन,
7: स्त्री तथा प्रसुति,
6: बाल रोग,
7: छाला तथा यौन रोग,
6: हार जोड्ने नसा तथा बात रोग,
7: टाउको तथा मनोरोग,
6: नाक कान घाँटी,
7: जनरल सर्जरी,
6: भिडियो एक्सरे,
7: डिजिटल एक्सरे,
6: ईसीजी,
7: डेन्टल तथा प्याथोलोजी,
6: फिजियोथेरापी
7: तथा फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध छन्।
8: किशोर किशोरी, युवाहरू र 15 देखि 49 वर्ष समको महिलाहरूलाई अस्थायी परिवार योजनाको साधन, लामो समयको साधनमा कपरटी र इम्प्लान्ट सेवाहरू उपलब्ध रहेको छ।
9: गुणस्तरीय सेवामा विगत लामो समयदेखि प्रतिबद्ध
10: नीता पोलिक्लिनिक प्राली, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम, रूपन्देही,
11: रेडियो लुम्बिनीको ठ्याक्कै अगाडि। फोन नम्बर 0175628 32, मोबाइल
12: 9857018 35।
13: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ई बुढ़ौती में बूढ़ा बूढ़ी का बात कही जाता? अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल भाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे ना तरीका सास ससुर के? हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद 2 वर्ष के जब तक नाई होई जाले, ई 1000 दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
14: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन होई गईल, और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत।
13: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
15: गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
13: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
14: सब मिल के खियावल जाए,
13: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोश, हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
14: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे, उसे एक जवा बेची दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज, उसे 2 जवा बेची देवल जाए।
13: लेकिन ई सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दीहे के चाही, खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सकभर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने।
14: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही एफएम द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
12: नमस्ते है नमस्ते होइन बुढेसकाल में के कुरा में हो बुढ़ा बुढ़ी गफी तै
16: के हुनु नस्नानी जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी सासू ससुर को मेसो खोज्दै छम क्या
12: आहा यो अनि तरिका सासु ससुरा को हो त पेट में बच्चा बसे देखि दुई वर्ष को हुन्जेल सम्म का यी हजार दिन में आमा र बच्चालाई पोषण युक्त खाना खुवाउने र सरसफाई का बारे में ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुबई को स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
17: लौ ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले चाहिँ भयो के गर्नुपर्छ भन्दिउँ त नानी।
12: ल यो सुन्नु त रेडियो में फुके को फुके हुन्छ त
18: अनि फलफुल र सागपात बच्चाको खाना साथ साथ
19: सबै मिलाइ खुवाऊ।
18: कम्तीमा दुई वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाऊ, बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ। हो मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि छ महिना पूरा भएपछि आमाको दुधको साथै अण्डा माछा मासु हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफुल पनि खुवाए। तपाईँले नि
20: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई दुई पटक थप पोसिलो खाना खुवाऊ।
21: हो यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी हात सफा राख्ने, खानेकुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो नि। आईडीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्यूट्रिशन परियोजना तथा कृष्णसार एफएम द्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन तिलोत्तमा में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व तथा देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपक गौतम तथा प्याप्सन तिलोत्तमा परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन रूपन्देही में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक संस्था, बौद्धिक वर्ग एवं शैक्षिक व्यक्तित्वहरूमा सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपक खनाल, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन परिवार, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य दिनेश भूषाल एवं प्राध्यापक सुमन भूषाल अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुथुल 8 सुखानगर रूपन्देही परिवार

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक रामप्रसाद ढकाल, नेता पोलिक्लिनिक प्राली परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम, रेडियो लुमिनी को ठैक्कै अगाड़ी। संपर्क नंबर 0175268332।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दक्ष अनुभवी र अब्बल शिक्षण सिकाई को अर्को नाम न्यू लाइफ मावि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी परिवार तिलोत्तमा एक शंकर नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल 98570 34520।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: न्यू इन्भायरमेन्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तुलुतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही मोबाइल 98570 26294।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: खेल खेलाऊ स्वस्थ बनाऊ अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने तथा नवजीवन क्लब परिवार तिलोत्तमा 6 10 नंबर रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा संपूर्ण संचालक समिति ल्याब प्रशासन कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेशनल प्याथ ल्याब परिवार बुटवल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य संचालक समिति सलाहकार लेखा समिति कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राजेन्द्र कुवर टाकुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार खेलोत्मा एक ड्राइवर टोल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष अर्चित श्रेष्ठ, प्राचार्य वेदनारायण भट्टराई तथा श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्देही।

छोड़ी गाँव घूम न जानू ना बाघ भालू गैंडा हाथी चितुआ पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष अर्जुन बस्याल तथा पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्यारामाउंट बोर्डिंग हाई स्कूल तिलुकमा एक नया मिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: पामीर इंटरनेशनल एकेडेमी परिवार तिलोत्तमा 2 जानकी नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98570 59848।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त आमा बुबा दाजुभाई एवं दीदी बहिनीहरुमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइन में सुन र चाँदी का गहना ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। पालपाली सखी सुन चाँदी पसल तिलोत्तमा 5 मणिग्राम बजार प्रोप्राइटर सूरज कविता गहतराज। सम्पर्क नम्बर 0175629614 मोबाइल नम्बर 9847007777 र 9847058727।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष राजेश कुमार कसौदन, महासचिव भूपराज अर्याल तथा पश्चिमांचल टैंकर व्यवसायी संघ परिवार तिलोत्तमा साथ भलबारी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष जितेन्द्र बौडेल जितु, प्राचार्य केएन सागर गेवाली तथा लिटिल प्याराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार तेलोतना सात भलभारी रूपन्दे। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98575 35824।

बीमा गरौं जीवन सबल बनाऊ। नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण बीमाकर्ता अभिकर्ता बीमित परिवार तथा संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। दुर्गा प्रसाद पांडे एजेंसी मैनेजर तथा एलआईसी नेपाल परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, प्राचार्य दीपक खनाल तथा श्री कुंवरवर्ती इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लीला पन्त तथा नारी जागृति महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड केउलानी रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। प्राचार्य कमल कोइराला तथा अध्यक्ष कुम बहादुर बयम्बु नमूना बोर्डिंग स्कूल चिलकमा 10 बेमरी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्लम्बर सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप सधैंको भरोसा आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुमिनी बिजनेस प्राली योगीकुटी बुटवल साथै हामी कहाँ प्लम्बर ब्रान्ड का सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप पाउनुका साथै स्टील टंकी प्लास्टिक टंकी र धारा सेट उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98572453 र 98572453।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: चेयरमैन बसंत रोका छेत्री, माउंट एवरेस्ट कथा मिल्स, माउंट एवरेस्ट एग्रोवुड तथा माउंट रोजिंग टॉप एंड टाइम तिलोत्तमा 16 पर्सहवा रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हीरालाल खनाल, व्यवस्थापक दिल्लीराज शर्मा, मिलीजुली बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, तिलोत्तमा 8 सूर्यपुरा, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे मिलीचुली क्लब शंकर नगर तिलोत्तमा एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लेखनाथ पराजुली, मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण सर्जिकल व्यवसायी औषधी विक्रेता आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। प्रोपराइटर सुरेश कुमार नेउपाने, मेडिकेयर सर्जिकल एण्ड केमिकल, बुटोल छ मैत्रीपथ।

नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। मणिग्राम जर्नल स्टोर्स मणिग्राम चोक रूपन्देही दैनिक उपभोग्य सामग्री को थोक तथा फुटकर विक्रेता हजुर इस मणिग्राम जर्नल स्टोर्स में विवाह व्रतबन्ध र पार्टी लगायत का शुभ कार्य का लागि आवश्यक पर्ने संपूर्ण घरायसी सामग्री सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। सीधा संपर्क 071-562-477 र 98-470-59-25।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। प्रोपराइटर कृष्ण रसाईली मनकामना सुन चाँदी पसल सिलोतमा एक ड्राइवर टोल चोक रूपन्देही हामी कहाँ आधुनिक तथा जुनसुकै डिजाइनमा सुन र चाँदी का गहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। साथै विवाह लगायत का जुनसुकै शुभ कार्यमा सुन लगायत का गर गहना का लागि सधैं सम्झिनु होला है मनकामना सुन चाँदी पसल सिलोतमा एक ड्राइवर टोल चोक।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोपराइटर कृष्ण प्रसाद पांडे, माछा पुछरे ट्रेडर्स परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम वडा कार्यालय जाने माछा पुछरे पथ, सम्पर्क नम्बर 98570042306। साथै हामी कहाँ दैनिक उपभोग का सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै सबै खाले खाद्यान्न सामग्री थोक तथा फुटकर मूल्यमा बेचबिखन गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बाल शिक्षा में लगानी ल्याउँछ सुन्दर बिहानी अध्यक्ष गोपाल टंडन प्राचार्य विष्णु प्रसाद ढकाल तथा लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूल तिलोत्तमा 13 मधौलिया रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: स्कूल तथा कैंपस ड्रेस को विश्वसनीय पसल उपहार में नया वर्ष को बहार प्रोपराइटर पारस पौडेल तथा दामोदर पौडेल उपहार साड़ी सेन्टर तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही साथ ही हामी कहाँ विभिन्न प्रकार का साड़ी कुर्ता सलवार शॉर्टिंग सुटिंग स्कूल बोर्डिंग र कैंपस का ड्रेस तथा स्कूल र कलेज का ब्याग सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98470 77118।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीजनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष कृष्ण रसाईले तिलुत्तमा सुनसादी व्यवसाय सङ्घ तिलुत्तमा एक ड्राइभर टुल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य शंकर दत्त उपाध्याय, श्री टिकुलीगढ़ माध्यमिक विद्यालय, चिलोत्तमा 14, टिकुलीगढ़, रूपन्देही।

0: से बचे की खंती मच्छर के काटे से बच भी सर्वोत्तम उपाय हुए। पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहना जाए। सूते के समय मच्छर से बचे खंती मच्छरदानी के प्रयोग करा जाए। घर के आसपास और खेत बाड़ी में काम करे के समय मच्छर के काटे से बचा जाए। झाल और दरवाजा में जाली लगाई के बंद करा जाए। मच्छर उत्पन्न न हुए देख लिए घर के आसपास सफा रखा जाए और पानी जमे के न देवा जाए। अचानक बुखार और ज्यादा सर दर्द भय में तुरंत नजीक के स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में जचावा जाए।
1: अनुरोध आग लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय राप्ती उपत्यका देवखुरी नेपाल।
2: हार्दिक निमन्त्रणा हाम्रो यस संस्था अनाथ तथा असहाय महिला कल्याण समाज रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रममा आश्रित सुरेन्द्र बानियाले महाभारत कुन्ती पुत्र राधेय पण्डको जीवनी कवितालाई सत्सङ प्रवचन गर्ने कार्यक्रममा सम्पूर्ण आमा समूहहरू कर्मचारीहरू संघ संस्थाहरू सम्पूर्ण धर्म प्रेमी बुवामा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू उपस्थित भएर प्रवचन श्रवण गरी पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
3: मिति 2083 जेठ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म समय 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म स्थान आश्रम प्रांगण अध्यक्ष मैनादेवी भण्डारी।
4: कति धेरै भिड हो, मलाई यो सेतो छडी समातेर उभिन पनि गाह्रो भइसक्यो। ल मलाई कसले छुँदैछ यताउता, आँखा भने देख्दिन, कसलाई आरोप लगाउनु र? अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर हेप्न पाइन्छ? लौ न सहयोग गर्नुहोस्।
5: ओए बहिनीलाई के गरेको हो, त मान्छे नै रहेनछस्।
6: सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिऊ। अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध हामी सबै एक हौ।
7: डिसेबिलिटी राइट्स फण्डको आर्थिक सहयोगमा नेत्रहीन महिला संघ नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
8: नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
9: विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेम जीएम, विद्यालय संचालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र थापा मगर, प्राचार्य लक्ष्मण अर्याल तथा सेन्ट जोसेफ इंग्लिश स्कूल परिवार, सिलोकमा साथ भलबारी रूपन्देही।

0: फोन पॉइंट संग सदै रिवॉर्डेड
1: नया वर्ष को शुभ कामना।
2: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: संस्कृत भाषा हाम्रो पहिचान, धर्म संस्कृति जोगाउन थालौ अभियान। प्राचार्य बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष गोपाल भट्टराई तथा सरस्वती संस्कृत विद्यापीठ क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मडगिराम रूपन्दे।
4: यति बेला दिउँसोको

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राजेन्द्र कुवर, टाकुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, खेलोत्तमा एक ड्राइवर टोल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: इंजीनियर दुजेन्द्र कुमार बस्नेत सनराइज इंजीनियरिंग कंसल्टेन्सी परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही रेडियो लुमिनी भएको भवनमा।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सचिव अरविंद पांडे, अध्यक्ष संतोष कुमार शेरचन्न तथा श्री सिद्ध बाबा मंदिर विकास समिति परिवार तीनाउतीन

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर सूरज लोहागुन, श्री कैश आभूषण सुन चाँदी पसल, तुलसमा 5 प्रेम भवन सटर लाइन। हामी कहाँ सुन चाँदी का अत्याधुनिक डिजाइन का 24 क्यारेट का रेडीमेड गरगहना पाउनु का साथै अर्डर अनुसार का गरगहना सुपथ मूल्य में बनाइन्छ। सीधा सम्पर्क 98570 60790।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पूर्व राइटर प्रकाश कार्की, साना किसान दुग्ध बिक्री केन्द्र, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोक रूपन्दे। साथै हामी कहाँ शुद्ध ताजा पनीर, घिउ, दूध, दही, नौनी एवं कुल्फीका विभिन्न आइटमहरू सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9872728157।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष गोपाल रामदाम, रूपन्देही सुनचादी व्यवसायी संघ परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण रिसन में आबद्ध विद्यालय विद्यार्थी पदाधिकारी बुद्धिजीवी एवं संपूर्ण जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष फूल बहादुर सरांगोटी पवन, रूपन्देही एकीकृत विद्यालय संगठन परिवार, रिसन रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्कृत भाषा हाम्रो पहिचान, धर्म संस्कृति जोगाउन थालौं अभियान। प्राचार्य बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष गोपाल भट्टराई तथा सरस्वती संस्कृत विद्यापीठ क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर जवाहरलाल न्यौपाने, पूजा मेडिकल हल, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही, सम्पर्क नम्बर 98570 3588।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष अर्चित श्रेष्ठ, प्राचार्य वेद नारायण भट्टराई तथा श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष अर्जुन बस्याल तथा पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्यारामाउंट बोर्डिंग हाई स्कूल तुलुतमा एक नया मिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पामीर इंटरनेशनल एकेडेमी परिवार तिलोत्तमा 2 जानकी नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 98570।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेशमा रहनुभएका सबैमा सुख शान्ति समृद्धि एवं देशमा राजनैतिक स्थायित्वको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष रुस्तम कडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी महानुभाव शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष क्षेमेन्द्र राणा, श्री राम जानकी शिव मंदिर परिवार, तिलोत्तमा 9 कुटी, मंगलापुर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य दिनेश भूषाल एवं प्राध्यापक सुमन भूषाल अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुथुल 8 सुक्खा नगर रूपन्देही परिवार
2: लुम्बिनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक रामप्रसाद ढकाल, नेता पोलिक्लिनिक प्राली परिवार, तिलोत्तमा 5 मडिग्राम, रेडियो लुमिनी को ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 0175268

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: दक्ष अनुभवी र अब्बल शिक्षण सिकाई को अर्को नाम न्यू लाइफ मावी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी परिवार तिलोतमा एक शंकर नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल

0: शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइन मा सुन र चाँदी का गहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। पालपाली सखी सुन चाँदी पसल तिलोत्तमा 5 मणिग्राम बजार प्रोप्राइटर सूरज सविता गहतराज। सम्पर्क नम्बर 0175562914 मोबाइल नम्बर 98470077777 र 98470558627।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष राजेश कुमार कसौदन, महासचिव भूपराज अर्याल तथा पश्चिमांचल टैंकर व्यवसायी संघ परिवार, तिलोत्तमा सात भलवारी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याटसन तिलोत्तमामा आबद्ध सम्पूर्ण शैक्षिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व तथा देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दीपक गौतम तथा प्याटसन तिलोत्तमा परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन रूपन्देह में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक संस्था, बौद्धिक वर्ग एवं शैक्षिक व्यक्तित्वहरु में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दीपक खनाल, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन परिवार रूपन्देह।
2: हामीले खुशी बनाउँदै नयाँ वर्षलाई स्वागत।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य कमल कोइराला तथा अध्यक्ष कुम बहादुर बयम्बु नमूना बोर्डिंग स्कूल सिलुकमा 10 बेमरी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्लम्बर सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप सबैको भरोसा आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुम्बिनी बिजनेस प्राली योगीकुटी बुटवल साथै हामी कहाँ प्लम्बर ब्रान्ड का सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप पाउनुका साथै स्टील टंकी प्लास्टिक टंकी र धारा सेट उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9857042583 र 9857042483।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: चेयरमैन बसन्त रोका छेत्री, माउंट एवरेस्ट कथा मिल्स, माउंट एवरेस्ट एग रोड तथा माउंट रोजिंग टप एंड टाइम किलोतमा 16 पर्स हवा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नवज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98 4 70 26 8

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: खेल खेलाऊ स्वस्थ बनाऊ
2: अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने तथा नवजीवन क्लब परिवार तिलोत्तमा 6 10 नंबर रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा सम्पूर्ण संचालक समिति, ल्याब प्रशासन, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेशनल प्याथ ल्याब परिवार बुटवल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: मणिग्राम जर्नल स्टोर्स मणिग्राम चोक रूपन्देही दैनिक उपभोग्य सामग्री को थोक तथा फुटकर विक्रेता हजुर इस मणिग्राम जर्नल स्टोर्स में विवाह व्रतबन्ध र पार्टी लगायत का शुभ कार्य का लागि आवश्यक पर्ने संपूर्ण घरायसी सामग्री सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। सीधा संपर्क 071-562-477 र 98-470-5925।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। फोर्पराइटर कृष्ण रसाईली मनकामना सुन्छ आदि पसल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर कृष्ण प्रसाद पाण्डे, माछा पुछरे ट्रेडर्स परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम वडा कार्यालय जाने माछा पुछरे पथ, सम्पर्क नम्बर 98570042306। साथै हामी कहाँ दैनिक उपभोगका सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै सबै खाले खाद्यान्न सामग्री थोक तथा फुटकर मूल्यमा बेचबिखन गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बाल शिक्षा में लगानी ल्याउँछ सुन्दर बिहानी अध्यक्ष गोपाल टंडन प्राचार्य विष्णु प्रसाद ढकाल तथा लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूल तिलोत्तमा 13 मधौलिया रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हीरालाल खनाल, व्यवस्थापक दिल्लीराज शर्मा, मिलीजुली बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, तिलोत्तमा 8 सूर्यपुर।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरू क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे, मिलीचुली क्लब शंकर नगर, तिलोत्तमा एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लेखनाथ पराजुली, मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा स्वर जुडा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त इस आमा समूह में आबद्ध महिला दीदी बहनी शुभेच्छुक वडावासी एवं देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दीपा पांडे तथा कैलाश आमा समूह तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्राचार्य दिलबहादुर थापा तथा अध्यक्ष सूरज थापा श्री ज्योति आधारभूत विद्यालय खुलोत्तमा 8 ज्योति नगर 4 नंबर चौक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रिन्सिपल डीबी थापा, लिटिल स्टार बोर्डिंग स्कूल परिवार, तिलोत्तमा 16 जुडा रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98570 26315।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष जितेन्द्र बौडेल जितु, प्राचार्य केएम सागर गेवाली तथा लिटिल प्याराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार तेलोतना सात भलबारी रूपन्दे। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 35824।

बीमा गरौं जीवन सबल बनाऊ। नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण बीमाकर्ता अभिकर्ता बीमित परिवार तथा संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। दुर्गा प्रसाद पांडे एजेंसी मैनेजर तथा एलआईसी नेपाल परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, प्राचार्य दीपक खनाल तथा श्री कुंवरवर्ती इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य मृगेन्द्र प्रसाद रिजाल, श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय परिवार, तिलोत्तमा 9 केउलानी, रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 67029।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक समीर रिजाल तथा किशन केसी, फेमस आल्मोनियम एण्ड स्टील इंजीनियरिंग ग्लास हाउस परिवार तिरुत्तमा 9 शंकरपुर रूपन्दे, साथ ही हामी कहाँ आल्मोनियम को झ्याल ढोका, अफिस डेकोरेशन, पाटेसन, कटन वाल तथा सीसा फन ग्लास एवं स्टील सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सुपथ मूल्यमा गरिन्छ।
2: साथै यहाँ युपीभीसीका झ्याल ढोका सम्बन्धी कामहरू पनि गरिन्छ।
1: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 9857015082 र 9857042700।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डन मोडल एकेडेमी परिवार तिनपा छ नामिल रूपन्दे।
2: पितो शान्तिको मोहन लुम्बिनी, शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष बाबुराम देवकोटा ध्रुवतारा युवा क्लब तिलोत्तमा 1, 5 र 9 को संगम प्रेमनगर रूपन्देही समाज सेवामा सदैव अग्रणी ध्रुवतारा युवा क्लब।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्मा तथा धौलागिरी मल्टी स्पेशलिटी डेन्टल क्लिनिक परिवार तिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्दे साथै विगत 15 वर्षदेखि मणिग्राम क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट सेवा दिन सफल वरिष्ठ डेन्टल सर्जन डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्माद्वारा दाँत मुख र गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार गरिन्छ। साथै हामी कहाँ इम्प्लान्ट एवं अर्थोडेन्टिक सेवा पनि उपलब्ध छ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जन्म सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मैनेजिंग डाइरेक्टर प्रकाश थापा तथा देव पाइप इंडस्ट्रीज प्राली तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्थापक प्राचार्य खेमेन्द्र राणा, क्रिस्टल नलेज एकेडेमी परिवार, तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देह।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डाक्टर शेखर पोखरेल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट क्रिम्सन अस्पताल परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: महादेव ऑटोमोबाइल्स होंडा कंपनी को अथोराइज सर्विस सेंटर तिरोत्तमा 5 मणिग्राम पर्भु बैंक को छेवै में साथ ही हमी कहाँ होंडा बाइक तथा स्कूटर सर्विस गरिनुका साथै होंडा का जेन्युइन पार्ट्सहरु सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 071-591-159 र 98-472-97-159।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक रामकृष्ण पौड्याल, हेल्दी स्माइल डेन्टल केयर परिवार, तिलोत्तमा 5 मडिग्राम, रेडियो लुम्बिनी को ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क 0175625993। साथै हामी कहाँ वरिष्ठ डेन्टल सर्जन द्वारा दाँत मुख तथा गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार र परामर्श सेवा उपलब्ध छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: ज्ञानगंगा पाठशाला परिवार तिलोत्तमा चौर शीतल कुंज रूपन्देही। संपर्क नंबर 98573304।

0: खैदाइ दुई खिल्ली चिरोट अनि एउटा सुर्ती ल्याउनुहोस् न।
1: ए ल ल लिनुहोस् भाइ।
0: अनि दाइ कति भयो पैसा?
1: ल हेर भाइ, के गरेको तपाईँले? तपाईँलाई थाहा छैन तिलोत्तमा नगरपालिकाले सार्वजनिक ठाउँमा बसेर चुरोट पिउन अनि सुर्तीजन्य पदार्थ खान निषेध गरेको छ नि। चुरोटका ठुटा जहाँ पायो त्यही फाल्न पनि निषेध गरेको छ। हेर्नुहोस् है भाइ, कारवाहीमा पर्नु होला नि। हेर्दा जान्ने बुझ्ने देखिनुहुन्छ, ख्याल गर्नुहोस् है भाइ। ए यसरी यो डस्टबिनमा फाल्नु पर्ने
2: हो? तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा चुरोट पिउने सुर्तीजन्य पदार्थ र त्यसको खोल फाल्ने गरेमा कानून अनुसार दण्ड जरिवाना हुने हुँदा पूर्ण सरसफाई अभियानमा सरिक भई सभ्य नागरिकको परिचय दिउ।
3: अनुरोधक तिलोत्तमा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मणिग्राम रूपन्देही।
4: तिलोत्तमा नगरपालिकाको फोहर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरूरी सूचना। फोहर मैला संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यालय दिगो र वैज्ञानिक बनाई वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको प्रमुख सूचकलाई कार्यान्वयन गर्न 2079 चैत्र 1 गतेबाट तिलोत्तमा नगरपालिकामा फोहर मैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गरी कुहिने र नकुहिने फोहर अलग अलग रूपमा संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। साथै अबका दिनमा आफ्नो घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, होटल, रेस्टुरेन्ट, कार्यालय लगायत सम्बद्ध सबै स्थानमा कुहिने र नकुहिने फोहर राख्ने अलग अलग डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुहुन तथा डायपर, सेनेटरी प्याड तथा सिसाजन्य फोहरलाई छुट्टै झोलामा दिई सोही अनुरूप फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासीमा अनुरोध छ। तोकिए बमोजिमको कार्य नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र मिश्रित फोहर नगरपालिकाले संकलन नगर्ने कुरा पनि सम्पूर्ण नगरवासीमा जानकारी गराइन्छ।
3: अनुरोधक तिलोत्तमा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मणिग्राम रूपन्देही।
5: नमस्ते है नमस्ते। होइन बुढेसकालमा के कुरामा हो बुढा बुढी गफी तै
6: के हुनु नर्स नानी, जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी सासु सालको मेसो खोज्दै छौ क्या?
5: आहा, यो हो नि तरिका सासु ससुराको। हो त, पेटमा बच्चा बसेदेखि दुई वर्षको हुन्जेलसम्मका यी हजार दिनमा आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने र सरसफाईका बारेमा ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
7: लौ, ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले झैं भयो। के गर्नुपर्छ भन्यौँ त नानी?
5: ल यो सुन्नु त, रेडियोमा फुकेको फुकै हुन्छ त।
8: अनि फलफुल र सागपात, बच्चाको खाना साथ साथ
9: सबै मिलाई खुवाऊ।
8: कम्तीमा दुई वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाऊ, बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ। हो, मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि 6 महिना पुरा भएपछि आमाको दुधको साथै अन्डा, माछा मासु, हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफुल पनि खुवाए। तपाईँले नि
10: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई दुई पटक थप पोसिलो खाना खुवाऊ।
11: हो, यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी हात सफा राख्ने, खानेकुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने, अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो नि? आईडीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्यूट्रिशन परियोजना तथा कृष्णसार एफएम द्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश।
12: नमस्कार हो नमस्कार नाइ, यी बुढौती में बुढा बुढी का बात कही जाता? अका होई डाक्टर नी बहिनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भाईल भाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे ना तरीका सास ससुर के? हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई होई जाले ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कैल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
13: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गई। और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत?
12: ठीक बा, सुनल जाए रेडियो में लगातार बाजत बा।
14: गोश्त मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोश्त मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
12: फल फूल और सागपात बच्चा के खाना साथ साथ
13: सब मिल के खियावल जाए,
12: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संती 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी अंडा मछरी गोश हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
13: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहलगे उसे एक दवा बेची दिहल जाए और बच्चा के महतारी के जितना देत रहलगे रोज उसे दुई दवा बेची देवल जाए।
12: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाहिए, खास करके हाथ

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: भारती मार्बल्स परिवार तिलोतमा 9 मंगलापुर रूपन्देही साथै हामी कहाँ टाइल ग्रेनाइट पाइप फिटिंग बेसिन धारा आइटम एवं कम्बोर्ड लगायत का सामग्री सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98575 2255।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364460।
1: यति बेला साँझको

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त इस आमा समूह में आबद्ध महिला दीदी बहनी शुभेच्छु को वड़ावासी एवं देश विदेश में रहन हुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दीपा पांडे तथा कैलाश आमा समूह तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही परिवार।

0: गर्ने एउटा थाक्ने जहान दिनभरि तिमीले के गरेर बस्थ्यौ हँ? तीन दिन भयो कपडा धुन दिएको, आज पनि त्यसै असरल छन्।
1: मैले काम गरेको तपाईँले कहिले पो देख्नु भएको छ र?
2: के को छलफल हो दाई भाउजू? दुवैजना थकित पनि देखिनुहुन्छ।
1: हेर्नुहोस् न बाबु, हुन त घरका कुरा नभने पनि हुने हो। बिहान उठेदेखि घरको सरसफाई, चिया, नास्ता, खाना, बच्चालाई स्कूल, दाईलाई अफिस, भाँडा भान्सा, करेसा बारीको काम, एक मिनट फुर्सद छैन। तर दाईले मेरो कामै देख्नुहुन्न।
2: हुन त हो, घरका काम कति हुन्छन् कति गणना गरी साध्य छैन। अफिसको एक करोड काम भन्दा त घरका काम धेरै गाह्रो छ। आफूले गर्न परे पो थाहा हुन्छ, नगरेकालाई कसरी थाहा होस्।
0: ओहो भाइ, आज तिमीले साँच्चै मेरो आँखा खोलिदियौ। घरमा कम काम हुन्छ म बल्ल बुझे भाइ।
3: एक अर्काको कामको सम्मान गरौ, समाज परिवर्तनमा अग्रसर बनौ।
4: अब सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ सेवाहरूको लागि सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी।
5: हाम्रा सेवाहरू:
4: आधुनिक भवनको नक्सा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
5: बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लागि घर जग्गा तथा सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्ने,
4: विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको लागि द्वितीय मूल्याङ्कन गर्ने,
5: घरेलु कार्यालयको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने।
4: सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, रेडियो लुम्बिनीको भवन, मणिग्राम रूपन्देही,
6: शाखा कार्यालय तिलोतमा नगरपालिकाको अगाडि।
7: सम्पर्क: 98570-24344, 98570-35227 र 98570-73220।
8: बुटोल भएर हवाको बीच मणिग्राममा स्तरीय क्लिनिक नीता पोली क्लिनिक प्रणाली।
0: हाम्रा सेवाहरू:
8: जनरल फिजिसियन,
0: स्त्री तथा प्रसुति,
8: बाल रोग,
0: छाला तथा यौन रोग,
8: हार जोड्ने नसा तथा बात रोग,
0: टाउको तथा मनोरोग,
8: नाक कान घाँटी,
0: जनरल सर्जरी,
8: भिडियो एक्सरे,
0: डिजिटल एक्सरे,
8: ईसीजी,
0: डेन्टल तथा प्याथोलोजी,
8: फिजियोथेरापी
0: तथा फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध छन्।
9: किशोर किशोरी, युवाहरू र 15-49 वर्ष को महिलाहरूलाई अस्थायी परिवार योजनाको साधन, लामो समयको साधनमा कपरटिभ र इम्प्लान्ट सेवाहरू उपलब्ध रहेको छ।
10: गुणस्तरीय सेवामा विगत लामो समयदेखि प्रतिबद्ध
11: नीता पोलिक्लिनिक प्राली, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही,
12: रेडियो लुम्बिनीको ठ्याक्कै अगाडि। फोन नम्बर 071-562-832, मोबाइल
13: 98-570-21-835।
14: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ई बुढ़ौती में बुढ़ा बुढ़ी का बात कहल जाता? अका होई डाक्टरनी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल भाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के? हाँ तब का, पेट में बच्चा रहले के बाद 2 वर्ष के जब तक नाई हो जाले, ई 1000 दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
15: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन होई गईल, और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत।
14: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
16: गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
14: फल फूल और सागपात बच्चा के खाना साथ साथ
15: सब मिल के खियावल जाए,
14: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोश, हरियर सागपात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
15: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे, उसे एक जवा बेसी दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज, उसे 2 जवा बेसी देवल जाए।
14: लेकिन ई सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रखा, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने?
15: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
17: नमस्ते है, नमस्ते होइन, बुढेसकालमा के कुरामा हो बुढा बुढी गफी तै?
13: के हुनु नर्स नानी जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी स्या सुसारको मेसो खोज्दै छौ क्या
17: आहा यो नि तरिका सासु ससुराको हो त

0: मार्का खांची ओबीसी सीमेंट देश को सीमेंट
1: वर्जर घर रंग रौनक घर रमन दुवे रंगीन बनाउने आकर्षक अफर आज वर्जर पेंट्स को खरीद में पाउनुहोस् मोटरसाइकल फ्रिज र मोबाइल फोन जित्ने मौका साथ ही स्योर शॉट में पाउनुहोस् 100 स्क्वायर फीट को सेल्फ इल्यूजन डिजाइन पनि शर्तहरू लागू हुने छन्
2: शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।